0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजेको छ
2: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 9 बजेको छ.
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी.

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: नेपाल ऋण खप्पै बिमगा छ। क्याल्भोलुम प्रविधि से शोभा आल्मोनियम कोटेल सारा थेन रंगीन जस्ता पाता हुलास ड्यूरा कलर छ्यान भन्दा तीन गुना बड़ी विश्वसनीय प्रतिरोधात्मक थेन लानन टुबमुला
1: तीन गुना लाना टुला
0: हुलास मुसम अर्कु तिल दमाइसे
2: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 12 बजे को छ।
3: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.

0: दादी बोलती है तेरी शादी कभी नहीं होगी। तो दादी बोलती है तू दुनिया में सबसे अलग है।
1: तेरी दादी और दुनिया को

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक एक बजे को छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: मुटु छाती एवं श्वास प्रश्वास का बिरामी का लागि खुशीको खबर।
1: मुटु रोग का बिरामी अब लमजुङ बाहिर जानु पर्दैन। मुटु को भिडियो जाँच अब सेवा मोडल हस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड मा।
0: पुरानो मेडिकल कलेज चितवन का वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डाक्टर मनोज श्रेष्ठ सेवा मोडल हस्पिटल मा आउनु हुने हुँदा मुटु श्वास प्रश्वास ब्लड प्रेसर का समस्या भएका बिरामीहरूले स्वास्थ्य जाँच गराउनु भई समयमा नै ढुक्क हुनुहोस्। साथै सोही दिन मुटु को भिडियो जाँच इको कार्डियोग्राफी सेवा पनि उपलब्ध छ। साथै सेवा मोडल हस्पिटल का सम्पूर्ण सेवाहरू पनि सुचारू हुनेछ।
2: जाँच हुने दिन र समय यही जेठ 16 गते शनिबारका दिन बिहान 9 बजेबाट।
0: स्थान सेवा मोडल हस्पिटल प्राली सानिमा बैंक अगाडि बेसी सरसाथ लमजुङ। सम्पर्क फोन नम्बर 0665909900, मोबाइल 98477969229।
3: के तपाईँ शेयर बजार बारे जान्न चाहनुहुन्छ?
4: तपाईँको चाहना पूरा गर्नको लागि वर्षेनी युवा क्लब बेसहरको आयोजनामा शेयर बजारको आधारभूत ज्ञान, लगानी गर्ने तरिका र जोखिम व्यवस्थापन बारे शेयर सम्बन्धी अनुभवी विशेषज्ञ सुभाष चन्द्र भट्टराईद्वारा अभिमुखीकरण कार्यक्रम हुँदैछ। कार्यक्रममा सहभागी हुनुहोस्, मौकाको फाइदा लिनुहोस्। कार्यक्रम सञ्चालन हुने मिति 2083 जेठ 9 गते शनिबार, समय बिहान 10:30 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म।
3: स्थान बरन्डा रेस्टुरेन्ट इभेन्ट्स, भेसी सहर 7 लमजुङ।
5: समितियों चौदह के में बोधे लोटी पर दी रो बैंक ने विवरण पी भी है मुई खाता लिखे हमरो
6: खाई खाई बहु कोई लोटरी बढ़ दिलवा
7: आंगी समझो लोटरी पर दी हूँ छापता ही गुदी
6: बढ़ दी आ बढ़ दी लोटरी खाली पढ़ दी बा सहेली मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक वाइबर खाने बने खाई विषय खाई मई विश्वास आलन होने खाले पनी आप ही विवरण खाई मई आपिन खबर बनी वित्तीय संस्था के पासवर्ड पिन खाई मई आरी सुमी बैंक आप ही बनी आरी सतर्क
7: सिद्धार्थ ब्याङ्कर क्यारे जन हेदरी जारी सन्देश
8: सिद्धार्थ ब्याङ्क सम्बन्ध सधैँ भरिलाई।